कर पाहे। केतिया मूर्ख काहि काहे, केतिया दुख भूख सरमार है। बीता तथरी दाता पंड कलासी पाने होए, होर आख न सके खोए। जेख कह का आखण पाए, और जाने जितिया मोहे खाए। आपे जाने आपे ते, आके से भी खे खे। जिसन बक्से सिफत सला, नानक पाठ साई पासाओ। आ मुल गुण मुल वपार, मुल वपड़ी अमल भंडार। मुल आवे अमल ल चाहे, अमल पाए अमल समाहे। अमल तरम अमल दीपान, अमल तुल अमर भवान। अमल बख्शीश अमल निशान, अमल कर्म अमल फुरमान। अमल अमला की अन्न जाए, आक आक रहे लवलाए। आके वेद पाठ पुराण, आके पढ़े कर विख्यान वख्यान। आके परमे आके इंद, आके गोपी ते गोविंद। आके ईश्वर आके सिद्ध, आके केते कीते बुद्ध। आके दानव आके देव, आके सरनन मुंजन सेव। केते आके आकन पाए, केते के उठ उठ चाहे। एते कीते होर करे, था आक न सके के। जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने सच सोए। जे को आके बोल बिगाड़, ताले किए सिर गवार गवार। सोदर के हा सो कर के हा, जित पह सरब समाले। वाजे नाद नेक संका, केते बाव नहारे। केते र

0: दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम की, नरयारसों कुरसों चटिए। तुद डठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह देशाओ, जिस पास बैठिया सोइए, सबना दावे साओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अवकट सरवर नावे। बके न बोले हर गुण गावे, उत्तर अवकट सरवर नावे। बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे। रसत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे। भरपूर थार रहा सब ठौरे, राव सच व्रत नेम ना काल संतावे। सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवाज समाद लगावे। पारस परस परम पद पावे, सचमन कारण तत् बिलोवे। सुपर सर्वर मैल न तोवे, जैस्यो राता तैसो होवे। आपे करता करे सो होवे, गुर हिव सीतल अगन बुझावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे। निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा। तीरथ मजन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा। ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एके पाए। तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए। अवगत नाथ ना लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर। जल में जोत रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर। निद गुण गावा देख अदूर, अंतर बाहर अवर न कोए। ज्योतिस पावे सोफन होए, सुन पर थर नानक कहे विचार। निर्मल नाम मेरा आधार, अंतर बाहर अवर न कोए। ज्योतिस पावे सोफन होए, सुन पर थर नानक कहे विचार। निर्मल नाम मेरा आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग आसा फर्स्ट महल, अष्टपदीस सेकंड हाउस। वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु, ही डिसेंड्स द ट्रेचरस प्रेसिपाइस टू बेद इन द क्लेंजिंग पूल। विदाउट स्पीकिंग और सेइंग एनीथिंग, ही सिंग्स द ग्लोरियस प्रेसेस ऑफ द लॉर्ड। ही डिसेंड्स द ट्रेचरस प्रेसिपाइस टू बेद इन द क्लेंजिंग पूल। Without speaking or saying anything, he sings the glorious praises of the Lord. Like water vapor in the sky, he remains absorbed in the Lord. He churns the true pleasure to obtain the supreme nectar. Listen to such spiritual wisdom, O my mind. The Lord is totally pervading and permeating all places. Pause. One who makes truthfulness his fast and religious vows does not suffer the pain of death. Through the word of Guru's Shabad, he burns away his anger. He dwells in the 10th gate, immersed in the samadhi of deep meditation. Touching the philosopher's stone, he obtains the supreme status. For the benefit of mind, churn the true essence of reality. Bathing all in overflowing tank of nectar, filth is washed away. We welcome the one with whom we are imbued. Whatever the Creator does comes to pass. The Guru is cool and soothing like ice. He puts out the fire of the mind. Smear your body with the ashes of dedicated service and live in the home of peace. Make this your religious order. Let the immaculate bani of the word be your playing of flute. Spiritual wisdom within the supreme sublime nectar. Contemplation of the Gurus is one's bathing at holy places of pilgrimage. Worship and adoration within is the Lord's dwelling. He is the one who blends one light with the divine light. He delights in the delightful wisdom of loving the one Lord. He is the one of the self-elect. He merges with the Lord who occupies the throne. He performs his work in obedience to the will of his Lord and Master. The unknowable Lord cannot be understood. The lotus originates in the water and yet it remains distinct from water. Just so the divine light pervades and permeates the water of the world. Who is near and who is far away? I sing the glories of the Lord, the treasures of virtue. I behold him ever present. Inwardly and outwardly, there is none other than him. Whatever pleases him comes to pass. Listen, O Bhartharyogi, Nanak speaks after deliberation. The immaculate name is my only support. Inwardly and outwardly, there is none other than him. Whatever pleases him comes to pass. Listen, O Bhartharyogi, Nanak speaks after deliberation. The immaculate name is my only support. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
1: Tava Sikhana Prabhu Bhutra Maha.

तेरे क्या गुण आख वखाणा, जोसेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावे तुद जी से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त पय जन हर त्याया जी तिन तुटी जम की फासी, जन नर पौ जन हर नर पौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जीते हर हर रूप समासी, से तन जन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी परे भी अंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक कर हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत शास्त्र जी कर क्रिया खट करम करंता, से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई, तू जुग जुग एक सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई, तुद आपे पावे सोय वरते जी तू आपे करे सोई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई, चन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई, असा महला चोता तू करता सच्यार मैडा साई, जो तो पावे सोई थी सी जो तू दह सोई हो पाई रहा, सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादान मन मुख कवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया सुध तुब ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोय जन जाने हर गुण सदही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया, तू आपे करता।

तित सुरवरडे पैल निवास पाणी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहि चल हम देखत डूबियले मन एक न चेत से मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा नाहा जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरण जिंतु नाही भी सरिया असा महला पंजवा पई परापत मन खुद होरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर कर्ज तेर कित न काम साध संगत पच केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरंग जन्म मृत जा तरंग माया कह रहा जप तप संजम धर्म निक माया सेवा साधन जन हर राय।

नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र भेद सभा बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्रेयस पान कृपा तुम्हारी करम न कहो सब तोह बखानियो। दोहरा सगल